मॉनिटरिंग पर बहस शुरू करना भी इस तब्दीली की तायीद करता है। इस तरह इमिग्रेशन मैनेजमेंट में अब न सिर्फ फ्रंटेक्स, सरहदी दीवारें या वापसी के माहदे अहम होंगे, बल्कि डिजिटल मालूमाती निज़ाम की निगरानी भी एहतियाती सलामती पॉलिसी का हिस्सा बन सकती है। तहम ये नुक्ता नज़र अपने साथ एक बड़ा तजाद भी लाता है। गुमराह कुन मालूमात के खिलाफ जंग के नाम पर सोशल मीडिया की निगरानी को बढ़ाना, आज़ादी इजहार राय, ज़ाती डेटा के तहफ़ और जायज़ सियासी बहसों को महदूद करने के हवाले से नए तनाज़ात खड़े कर सकता है। ख़ास तौर पर बुहरानी सूरत हाल के तसव्वुर की मुबहम हदूद ये ख़तरा पैदा करती हैं कि गैर मामूली हालात के लिए तैयार किए गए डिजिटल कंट्रोल टूल्स वक्त के साथ साथ आम सिक्योरिटी मालूमात का हिस्सा बन जाएंगे। नतीजे के तौर पर सिप्ता का बहरान ये जाहिर करता है कि यूरोप की हिजरत की पॉलिसी में सिक्योरिटी की एक नई तह उभर कर सामने आई है। जहां जिस्मानी सरहदी सिक्योरिटी और डिजिटल स्पेस के दरमियान का फ़र्क ख़त्म हो रहा है, वहीं सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म भी अमली तौर पर हिजरत और सरहदी इंतज़ाम के अहम मोहरे बन रहे हैं। यूरोपीय यूनियन के लिए अब बुनियादी चैलेंज न सिर्फ गैर कानूनी आमद को रोकना होगा, बल्कि बड़े पैमाने पर नकल व हरकत शुरू होने से पहले ही डिजिटल स्पेस में मौजूद सिग्नल्स का पता लगाना होगा। इस लिहाज से सप्ताह को इस बात की एक अहम अलामत समझा जा सकता है कि यूरोप की मुस्तकबिल की सरहदी सलामती पॉलिसी बयक वक्त एक डिजिटल अर्ली वार्निंग और इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी पॉलिसी में तब्दील हो सकती है। ओरसाम के शुमाली और मशरकी अफ्रीका के कोऑर्डिनेटर डॉक्टर कान देवे जोलू का तज़िया आपकी खिदमत में पेश किया गया है। शोरश ज़दा अफ्रीका।

0: मौजूद सामिन कराम, अस्सलाम वालेकुम। ये सदाए तुर्की है, हम आपको खुश आमदेद कहते हैं। आज 24 अगस्त बरोज़ पीर है। इस वक्त अंकरा के मकामी वक्त के मुताबिक सपहर के 3, पाकिस्तान के वक्त के मुताबिक शाम के 5, भारत के वक्त के मुताबिक शाम के 5:30 और बांग्लादेश के वक्त के मुताबिक शाम के 6 बजे हैं।
1: सामिन, आप हमारे नशात को शॉर्ट वेव 16 मीटर बैंड 17,580 किलोहर्ट्ज़ के अलावा तुर्क सेट 3A ईस्ट और 4A वेस्ट समेत हमारी मोबाइल एप्लीकेशन पर भी सुन सकते हैं।
0: आज हमारे प्रोग्राम में अलग तरतीब खबरें होंगी, उसके बाद सिलसिलेवार प्रोग्राम देने वाले हाथ की कहानी और अनातोलिया की इब्तदाई तहजीब पेश की जाएंगी।
1: और हमारा प्रोग्राम हसबे मामूल 1 घंटे तक जारी रहेगा। आज आपकी मेज़बान है मिसबा शाहीन
0: सगीर अहमद
1: और स्टूडियो में हमारे साथ तकनीकी तआवुन कर रही हैं उसके खुराई।

0: Daha iyi zamin program ki ağzımı kaz kaz kabrım ka kulasa sumat firma diyeceğim.
1: Türkiye के सदर रजब तैयब एर्दोआन ने फरात थाला ऑपरेशन की सालगिरह के मौका पर खसूसी पैगाम जारी किया है।
0: अमरीकी वजीर खारजा माफ कीजिएगा अमरीकी वजीर खजाना ने कहा है कि वाशिंगटन ईरान के खिलाफ फौजी इकदाम के बाद एक नए मरहले में दाखिल हो चुका है।
1: इसराइली फौजें जनूबी शाम में दोबारा दाखिल हो गई हैं।
0: इसराइली फौज ने जनूबी शाम के

0: ये खबरें सदाए तुर्किये की उर्दू सर्विस से पेश की जा रही हैं।
1: रूसी सदर पुतिन ने तस्लीम किया है कि रूस में ईंधन की किल्लत जारी है। रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन ने कहा है कि यूक्रेन की जानिब से रूस के तवानाई के बुनियादी ढांचे पर हमलों के बाद मुल्क में ईंधन के मसाइल अभी तक मुकम्मल तौर पर हल नहीं हुए हैं। रूसी नशरियाती इदारे VGTRK से गुफ्तगू करते हुए पुतिन ने कहा है कि इन हमलों के बाद वज़ीर आज़म मिखाइल मिशोस्तिन तवानाई के शुबे में पैदा होने वाले मसाइल से निमट रहे हैं। पुतिन ने कहा कि गुज़िश्ता रोज़ वज़ीर आज़म से मुलाकात और इस मामले पर बातचीत का जिक्र किया और कहा कि हाँ, अभी तक तमाम मसाइल हल नहीं हुए लेकिन उन्हें हल किया जा रहा है। वज़ीर आज़म इन मामलों को अपनी निगरानी में रखे हुए हैं और एक खसूसी कमीशन भी कायम किया गया है।
2: अमेरिका में 75 ममालिक के शहरियों पर लगाई गई इमिग्रेंट वीज़े पर पाबंदी खत्म कर दी गई है। अमेरिका वजारत खारजा ने जनवरी में ब्राज़ील, कोलंबिया, मिस्र, हेटी, सोमालिया और रूस समेत तकरीबन 40 ममालिक के शहरियों को इमिग्रेंट वीज़े जारी करने को मुअत्तल कर दिया था। इंतजामिया ने इस इकदाम का इतलाक किस वजह से किया कि इस तरीके से ऐसे अफराद के दाखिले को रोका जा सकेगा जो मुमकिन तौर पर अवामी इमदाद पर इन्हसार करें। कवानीन के मुताबिक किसी इमिग्रेंट के वीज़े की दरख्वास्त इस बुनियाद पर मुस्तरद करने के लिए कि वो अवामी बोझ बन जाएगा, कौंसल खाने के अहलकार को फ़र्द की माली हालत, उम्र, सेहत, सलाहियतें और ख़ानदानी सूरत हाल को अलहदा अलहदा जाँचना ज़रूरी है। जज वारजास ने कहा है कि कौंसल खाने के अहलकारों को यह हिदायत दी गई थी कि वो खुद कफील सतह के अफराद के वीज़े भी महज उनके वतन पैदाइश की बुनियाद पर मुस्तरद कर दिए जाएं।
1: और यूरोपीय खवातीन वॉलीबॉल चैंपियनशिप में तुर्की ने स्लोवेनिया को 1-1 में 3 सेट से शिकस्त दे दी है। इस्तांबुल में होने वाली CEV यूरोपीय खवातीन वॉलीबॉल चैंपियनशिप के ग्रुप ए में दिफाई यूरोपीय चैंपियन तुर्की ने स्लोवेनिया को 1-1 में 3 सेट से शिकस्त देकर दूसरी कामयाबी हासिल की। सिन्हा दार्दम स्पोर्ट्स हॉल में खेले गए मैच में तकरीबन तुर्किया ने 21-25, 25-22, 17-25 और 16-25 के स्कोर के साथ सेट्स जीत लिए। मेलिसा वर्गास 19 पॉइंट के साथ तुर्की की टॉप स्कोरर रहीं। इल्कन आयदिन ने 13 पॉइंट्स और जहरा गुनेश

ने 12 पॉइंट्स हासिल किए। तुर्की ने पहला सेट 21 के मुकाबले में 25 से जीता, दूसरा 22 के मुकाबले में 25 से हारा, तीसरा सेट 17 के मुकाबले में 25 से जीता और चौथा सेट 16 के मुकाबले में 25 से जीत कर मैच एक के मुकाबले में 3 सेट से जीत लिया। वाज़ रहे कि कौमी टीम ने अपना पहला मैच लाटविया के खिलाफ 0 के मुकाबले में 3 सेट से जीता था। इसके साथ ही सदाए तुर्की से उर्दू में खबरें ख़त्म हुईं।

क्षमा रोशन हुई। उन्होंने कहा, कौम के बच्चों को कौम की मदद से दुनिया के जदीद तरीन इल्म से बहरावर होना चाहिए। आज हम इसी तालीमी मशल की दास्तान बयान कर रहे हैं जो 160 साल से ज्यादा अरसे से रोशन है। ऐसे बच्चों के लिए एक महफूज पनाह का जिनके वालिद का इंतकाल हो चुका हो, माली वसाइल महदूद हों लेकिन जहानत हीरे की तरह चमकती हो। शफकत का आशियाना कहलाने वाले और तालीम में इंसाफ को अपनी रूह बनाने वाले दारुशफा का की इस नाकाबले शिकस्त दास्तान में खुश आमदेद। दारुशफा का सिर्फ एक स्कूल ही नहीं था बल्कि ये तुर्की की शहरी समाजी तंजीमों की तारीख का पहला बड़ा इनकलाब था। इसके बानी यूसुफ जिया पाशा, गाजी अहमद मुख्तार पाशा, विदेनेली तौफीक पाशा, साकस्ल असद पाशा और अली नकी अफंदी अपने दौर के इंतहाई तालीम याफ्ता ब्यूरोक्रेट और फौजी अफसरान थे। उन्होंने जमीयत तदरीसिया इस्लामिया कायम की जो एक ऐसी शहरी तंजीम थी जिसने पहली मरतबा ये साबित किया कि अवाम अपने वसाइल से भी एक बड़ी तालीमी मुहिम शुरू कर सकते हैं। इब्तदा में इस सफर का आगाज कपल चार्श यानी बंद बाजार के दुकानदारों और हुनरमंदों के शागिर्दों की तालीम से हुआ, लेकिन इस तंजीम का विजन बहुत वसी था। सुल्तान अब्दुल अजीज की माली इमदाद और अवाम की जानब से एक एक पैसा जमा करके दिए जाने वाले अतियात की बदौलत इस्तंबुल के इलाके फातेह में अतालवी मामार बारबूरीनी के नक्शे के मुताबिक एक असीमुशान संगी इमारत तामीर हुई। यह इमारत अपने जमाने में यूरोप के जदीद तरीन तालीमी मराकज में भी शुमार होती थी। दारुशफाका के दरवाजे पर कुंदा बुनियादी मकसद बहसियत खैराती अदारे के यतीम बच्चों को सहारा देना ही नहीं, इन्हें सल्तनत के जदीद तरीन साइंसी उलूम, रियासी और गैर मुल्की जुबानों की तालीम से आरास्ता करके दुनिया का बाशऊर शहरी बनाना भी था। रिहाइश मुफ्त और मुकम्मल वजीफे पर मबनी ये निज़ाम दुनिया में मसावी मौके के तस्वुर के सबसे बावकार और इब्तदाई अलमबरदारों में से एक बन गया। दारुशफाका को हकीकी मानों में लाजवाल बनाने वाली चीज वो ज़हीन और बासलाहियत शख्सियात हैं जो इस पथरीली इमारत के अंदर से निकलकर तुर्की और दुनिया की तकदीर पर असरअंदाज हुई। दारुशफाका ने सिर्फ एक बच्चे का पेट नहीं भरा बल्कि इसके जहन में ये यकीन भी नक्श कर दिया कि नामुमकिन नाम की कोई चीज नहीं है। शफकत के आशियाने के हकीकी फर्जंद दाचका के नाबगे। दारुशफाका की कामयाबी सिर्फ इसकी पथरीली इमारतों में नहीं बल्कि इन बच्चों की हकीकी दास्तानों में पोशीदा है जो इस दरवाजे से यतीम की हैसियत से दाखिल हुए और दुनिया बदलने वाले रोशन ख्याल अफराद बनकर बाहर निकले। आइए अफसानों को एक तरफ रखते हैं और इन हकीकी दाशका वालों की दास्तान सुनते हैं जिनकी परवरिश इसी आशियाना शफकत ने की और जिन्होंने हमारी तारीख पर अपने नकोश सब्त कर दिए। इस फहरिस्त के नुमाया तरीन नामों में से एक मुसव्वर महमूद जोदा का नाम है जो तुर्क मुसव्वरी के पेशरुओं में शुमार होते हैं। जोदा 1918 में दारुशफाका में दाखिल हुए और यहाँ हासिल करदा तालीम के जरिए फन मुसव्वरी के नज्म व ज़ब्त को अपनी शख्सियत का हिस्सा बनाया। बात आसा उन्होंने यूरोप में तुर्क मुसव्वरी की नुमाइंदा मुस्तकिल मुसव्वरीन व मुजस्मा साजों की अंजुमन के क्याम में भी अहम किरदार अदा किया। इनके बुरश की बारीकी और फनी एहतियात दरअसल दारुशफाका में हासिल करदा इसी मजबूत और जामे तरबियत का अक्स था। दारुशफाका के परवरदा नाबगा रोजगार अफराद में इल्म की बुलंदियों की नुमाइंदगी करने वाली रोशन तरीन शख्सियात में से एक बिलाशुबा प्रोफेसर डॉक्टर अदनान सोकुलू हैं। 1929 में दारुशफाका से फारगुल तहसील होने के बाद सोकुलू ने इस आशियाने शफकत में हासिल करदा मुनज़्ज़म और बाकायदा तालीम के बल पर न सिर्फ तुर्की बल्कि आलमी तिब और तिबियात की तारीख में भी एक मुनफरिद और इनकलाबी इल्मी सफर तय किया। इनकी तहकीकात ने अमराज की तशखीस में अल्ट्रासाउंड के इस्तेमाल की राह हमवार की। इस मैदान में इनकी काविशों ने इन्हें आलमी सतह पर एक मोतबर माहिर तिब बना दिया। उन्होंने दारुशफाका की रखी हुई मजबूत बुनियाद पर अपना नुक्ता नजर तामीर करके ये साबित कर दिया कि इल्म की कोई सरहद नहीं होती। तालीम मुकम्मल करने के बाद उन्होंने अपने इदारे से जज्बाती ताल्लुक कभी खत्म नहीं किया। अपनी इल्मी कामयाबियों के साथ वो दारुशफाका के एक रोशन ख्याल फर्द की हैसियत से भी एक मिसाल बने। जदीद तिब में इस्तेमाल होने वाले तशखीसी और तिब्बी तस्वीर बरदारी की टेक्नोलॉजियों की तरक्की में अपने पेशरो किरदार के बायस वो दारुशफाका नामे इस कदीम और मजबूत इल्मी शजर की जानब से दुनिया को दिया गया एक अजीम तरीन साइंसी तोहफा बन गए।
دارالشفقہ کے پروردہ ہمہ جہت نابغہ افراد میں ترک موسیقی کی نزاکت کو جدید فنی تکنیک کے ساتھ ہم آہنگ کرنے والی اہم ترین شخصیات میں یقیناً ایم رشاد آئسو کا نام بھی شامل ہے۔ دارالشفقہ سے فاروق التحصیل آئسو نے اس قدیم وقف سے حاصل کردہ نظم و ضبط اور ثقافتی گہرائی کو اپنے منفرد دھنوں اور تخلیقات کے ذریعے موسیقی کی دنیا میں منتقل کیا۔ یہاں ایک وضاحت ضروری ہے، سعید فائق عباسیانک دارالشفقہ کے فاروق التحصیل نہیں تھے، لیکن انہوں نے اپنی والدہ کے ساتھ مل کر اپنی پوری جائیداد اس ادارے کے نام کر دی، اور یوں اگرچہ وہ اس کے طالب علم نہیں رہے لیکن روحانی طور پر داشکا والوں میں ان کا مقام سب سے بلند ہو گیا۔ آج دارالشفقہ کے عجائب گھر میں محفوظ ان کی وصیت اس بات کا ثبوت ہے کہ اس ادارے سے فاروق التحصیل نہ ہونے والے افراد نے بھی اس آشیانے کو کس طرح اپنے باپ کے گھر کی طرح سمجھا۔ جب ہم جدید دور میں داخل ہوتے ہیں تو داشکا آج بھی کاروباری دنیا سے لے کر علمی اور تحقیقی میدان تک زندگی کے ہر شعبے میں خدمت میں مصروف نظر آتا ہے۔ سابق اعلیٰ سرکاری عہدیدار اور وزیر اعظم کے دفتر میں خدمات انجام دینے والے نجدت سیچکن اوز جیسی ریاستی شخصیات سے لے کر آج عالمی کمپنیوں کی قیادت کرنے والے چیف ایگزیکٹو افسران تک ہزاروں داشکا والے اس ادارے کے نصاب میں موجود علم کی تازگی اور عصری تقاضوں سے ہم آہنگی کی زندہ مثالیں ہیں۔ دارالشفقہ نے بچوں کو ان کے باپ سے محروم ہونے کا احساس بلانے کی کوشش نہیں کی، بلکہ اس کمی کو معاشرے کے لیے ایک عظیم ذمہ داری اور کامیابی کی بے پناہ جستجو میں تبدیل کر دیا۔ یہاں سے فاروق التحصیل طلبہ کے رجسٹر میں درج ہر نام اس بات کا ثبوت ہے کہ ناکامی کی ایک داستان کس طرح کامیابی کی ایک لازوال داستان میں تبدیل ہو سکتی ہے۔ دارالشفقہ کو اپنے دور کے دوسرے اسکولوں سے ممتاز کرنے والی سب سے نمایاں خصوصیت ہمیشہ اس کا ایسا نصابی تصور رہا ہے جو مستقبل کے علم پر توجہ مرکوز کرتا تھا۔ ادارے کے ابتدائی برسوں میں عثمانی سلطنت کی جدید ترین ٹیکنالوجی یعنی ٹیلیگرافی کی تعلیم دی جاتی تھی، یہ محض اتفاق نہیں تھا۔ اس کا مقصد صرف یتیم بچوں کو تعلیم دینا نہیں بلکہ انہیں ایسی مہارتوں سے آراستہ کرنا تھا کہ وہ ریاست کے اہم ترین اور تصویراتی شعبوں میں خدمات سر انجام دے سکے۔ فرانسیسی زبان کی تعلیم پر خصوصی توجہ اور سائنسی علوم میں غیر معمولی

करता है और बहुत लंबे अरसे तक चाताल हुयुक में 9,000 साल पुराने मकबरे इस सवाल के कदीम तरीन जवाब में से एक हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि चाताल हुयुक में मैयत के रोज़मर्रा के सामान को कब्र में रखा जाता था ताकि वह अपनी नई दुनिया में अजीब महसूस ना करें। चट्टानी कब्रें, जिनमें से हम अनातोलिया के जुग्राफिया में बहुत सी मिसालें देखते हैं और जो उन मकबरों में अपने सामान के साथ दफन हैं, यह सब दरअसल इस यकीन की अक्कासी है कि मौत के बाद ज़िंदगी है। कदीम दौर के मशहूर फ़लसफ़ी अफलातून ने रूह की लाफानियत का नज़रिया पेश किया, जिससे उनके बाद बहुत से मुफक्किरीन यहाँ तक के आसमानी मज़ाहिब भी मुतासिर हुए। रूह जिस्म से पहले मौजूद थी और बाद में भी रहेगी। रूह की लाफानियत का तसव्वुर, जिसे तौहीद परस्त मज़ाहिब ने भी कबूल किया है, जन्नत और जहन्नुम के तसव्वुरात को यकजा करता है। यह ख्याल किया जाता है कि जो लोग ज़मीन पर अपना वक्त अच्छे दयानतदार और वफादार लोगों के तौर पर गुजारते हैं वो जन्नत में जाएंगे और बुराई करने वाले और काफिर जहन्नुम में होंगे। सिर्फ तौहीदी मज़ाहिब में ही नहीं बल्कि तकरीबन हर अकीदे में मौत के बाद की ज़िंदगी है और जजा और सज़ा का एक तरीक़ा हमारे सामने आता है। बहुत सी सकाफ़तों में इस ख्याल को कबूल किया जाता है कि मौत एक नई शुरुआत है। कदीम तुर्कों में खान को कदीम मिस्र में फिरौन के कीमती सामान के साथ दफन किया जाता था। द डिवाइन कॉमेडी को आलमी अदब की तारीख में सबसे अहम काम समझा जाता है। अगरचे आज के कुछ नकाद इसे साइंस फिक्शन थेरेपी के तौर पर बयान करते हैं, लेकिन यह काम हमारे बाद की ज़िंदगी के तस्वुर में बहुत बड़ा तआवुन करता है। इतालवी शायर और सियासतदान दांते ने दी डिवाइन कॉमेडी में जन्नत, जहन्नुम और पाकिजगी को बयान किया है। दांते ने जहन्नुम को नौ बाहम जुड़े हुए हल्कों के गढ़े के तौर पर बयान किया। हर दायरे में मुख्तलिफ गुनाह करने वालों को सजा दी जाती है और जब आप नीचे जाते हैं तो सज़ा भारी होती जाती है। इतालवी शायर ने दी गई सजाओं और मसायब को बहुत मुतासिर कुल अंदाज में लिखा है। दूसरी तरफ जन्नत नौ बाह में मरबूत आसमानी सतहों पर मुश्तमिल है। जहन्नुम के बरअक्स ये एक रोशन जगह है, जैसे जैसे आप खुदा के करीब होते जाते हैं रोशनी की शिद्दत बढ़ती जाती है। जन्नत की हर सतह पर पुरअमन रूहें हैं। जन्नत में सब कुछ हम आहंग है। ईसाइत और इस्लाम दोनों में जन्नत की तारीफ एक बाग के तौर पर की गई है। जन्नत हरियाली के दरमियान एक कुशादा और पुरअम जगह है जहाँ से नहरें बहती हैं। दूसरी तरफ जहन्नुम की तारीफ तारीकी, बुरी मखलूक और ना बुझने वाली आग की जगह के तौर पर की गई है। जन्नत और जहन्नुम की तफसील सकाफत से सकाफत और अकीदे से अकीदे में मुख्तलिफ है। ठीक है, आप क्या कहेंगे अगर हम आपको बताएं कि जन्नत और जहन्नुम अनातोलिया की सरजमीन में है, मरसिन के सिलिफ के ज़िले में वाक़ है, जो इसे देखने वालों को हैरान और खौफजदा भी कर देता है। आज हम इस प्रोग्राम में जन्नत और जहन्नुम के गार के बारे में बताएंगे। सामी, जन्नत और जहन्नुम जो एक सियाह और था घड़े की तरह नजर आते हैं, मरसिन के स्लिफ के कस्बे में एक सरसब्ज वादी में वाक़ है। आसमां का मुंह तकरीबन 5 फुटबॉल के मैदानों के बराबर है। जहन्नुम का मुंह जन्नत से छोटा है, तकरीबन 1.5 फुट बॉल के मैदान चौड़े हैं। दर हकीकत जन्नत और जहन्नुम दोनों ही सिंक होल्स हैं जो लाखों साल पहले वाक़ हुए थे। दूसरे लफ्ज़ों में कुदरती शक्लें जेर ज़मीन पानियों से खुदी हुई गारों की छतों के गिरने से बनती रहीं। जन्नत एक कुशादा सब सिंक होल है जो ज़मीन पर 450 कदम उतरता है, जहाँ परिंदों की आवाज़ें और बहते पानी की आवाज़ें सुनाई देती हैं। फर्श के करीब गार में एक गिरजाघर भी है। माजूरों और बुजुर्गों का ख्याल रखते हुए यहाँ एक लिफ्ट रखी गई है। इस जमाने में जब ईसाइत पर पाबंदी थी, मोमिनीन जन्नत के गढ़े में चुपके से अपनी नमाज अदा करते थे। बाद अजां यहाँ हजरत मरियम का गिरजा बनाया गया। यहाँ ज़ियोस का मंदिर भी है जो जमाने कदीम से गिरजा घर में तब्दील हो गया था और आज आसमान में खंडरात में है। दूसरी तरफ जहन्नुम एक खौफनाक गढ़ा है जिसकी तारीख और था शक्ल है, जिसे कोहे पैमाई के सामान के बगैर नहीं उतरा जा सकता। यहाँ तक कि अगर आप नीचे उतर नहीं सकते तो आप शीशे के मुशाहिदे की छत के साथ जहन्नुम के गढ़े के अंदर का हिस्सा देख सकते हैं, जब तक कि आपको बुलंदियों का खौफ ना हो। आमतौर पर कहा जाता है कि जो लोग जहन्नुम के एक तरफ खड़े होंगे और दूसरी तरफ पत्थर फेंकेंगे, वो जन्नत में ज़मीन से कुछ मीटर नीचे सिंक होल या शायद जहन्नुम और जन्नत के इनकास हैं जिनका लोग अपने ख्वाबों में तसव्वुर करते हैं। हालांकि